दो कुड़िया साड़ी गली च रहिंदिया, एक पतली एक भारी। ओ भारी दाते ब्याह हो गया, पतली लगे प्यारी। के दाल में नमक भुल गई, के दाल में नमक भुल गई। जद खिच के ओ जद खिच के छड़े ने अख मारी।

उससे भी कह दो कि अपनी आंख बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका